तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। कोशिश करिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, कोशिश करिए कि बिना बात के कोई नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हो। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप नाराज हो तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 5:36, 34 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

चल रहा हो जहां परिचय मूर्खता का वहां शांत रहना ही बेहतर है। चल रहा हो जहां परिचय मूर्खता का वहां शांत रहना ही बेहतर है। सजी हो महफिल मूर्खों की वहां से निकल जाना ही बेहतर है। मूर्खों की उस भीड़ में बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे? मूर्खों की उस भीड़ में बुद्धिमत्ता कैसे दिखाओगे? घुसोगे जबरदस्ती वहां तो खुद भी मूर्ख कहलाओगे। 5:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:45 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल

0: political and economic landscape.
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे. तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की. टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है. 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा. पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा. श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया. वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे. नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा. साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा. इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं. वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं. प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा. आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा. ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: दिस इज आकाशवाणी. द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public healthcare facilities from 2027. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bova in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges.

बिल्कुल, और हम भी हैं आप ही के। जी हाँ, गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे टू गोवा से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आरडी बर्मन का संगीत, और इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्णन ने।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही, और राखी बिल्कुल आ चुकी है स्टूडियो में, और निशिगंधा लेकर आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। और अब आप अपने दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Folan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह

0: सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैंडी क्लासन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tu Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. President Tu Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tu Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said, The elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation, but also contribute to peace and prosperity in the region. She said that India and Vietnam share a deep friendship rooted in historical, civilizational and cultural ties. Meanwhile, Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju also met Minister of Ethnic and Religious Affairs of Vietnam, Nguyen Dinh Khang, at Parliament House in New Delhi yesterday. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has reviewed the progress of the National Maritime Heritage Complex in New Delhi. NMHC is under construction at Luthal, Gujarat. It is a landmark initiative to showcase India's rich maritime legacy and civilizational connect with the seas. Mr. Sonowal has set July this year as the target for the completion of Phase 1 of the project. During the meeting yesterday, the Union Minister stressed on the need for collaboration with neighbouring and maritime nations, including countries from ASEAN, to showcase shared oceanic heritage and historical linkages with India. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party. TVK has approached other parties also as it is short of the majority marked by 11 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. Border Security Force has seized an abandoned Pakistani boat along the Kutch border. The recovery was made during routine patrolling in the sensitive Creek and Harami Nala areas of the international border in Kutch district. During preliminary inspection, fishing equipment and nets were recovered from the boat, though no explosive material was found. Security agencies are further investigating the matter. Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh has said that India stands at a

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

अलग अलग फिल्म से आपने गीत सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। बूंदों की हल्की थपकियों से सजी ये भीखी भीखी रात, आधी रात का ये सन्नाटा जैसे कुछ कहने को बेताब है। हवा में खुली मिट्टी की खुशबू दिल के किसी कोने को छू जाती है और ऐसे में अगर साथ हो कुछ सुरों का तो हर एहसास और भी गहरा हो जाता है। इस भीगे मौसम में, इस आधी रात के खामोश लम्हों में खुद को खो देते हैं कुछ सुरीले गीतों के साथ, जहां हर धुन एक कहानी कहती है, हर लफ्ज किसी की याद को जगा देता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी ये गीत हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं तो कभी किसी अधूरी बात, किसी पुराने ख्वाब की याद दिला जाते हैं। तो बस इस पल को थाम लीजिए, बारिश की इन बूंदों के संग दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और इन सुरीले गीतों में डूब जाइए, क्योंकि ऐसी रातें बार बार नहीं आती।

ये इश्क नहीं आसान फिल्म से आपने ये गीत सुना मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम यहां पर आपको करेक्ट मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, ये गीत अनवर ने गाया है और ये गीत है ये इश्क नहीं आसान फिल्म से।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दुनिया फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। ये वो वक्त है जब गीत सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर धुन बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। भीगा सा मौसम और इसके बीच चलती एक नर्म सी मेलोडी, जैसे रात खुद गुनगुना रही हो।

हर जाई फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। गीत चलते रहते हैं एक के बाद एक, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, फिर भी हर धुन जानी पहचानी सी लगती है। कभी लगता है जैसे ये रात किसी का इंतजार कर रही है, और कभी यूं लगता है कि इसे किसी का इंतजार ही नहीं है, ये अपने आप में पूरी है। तो आज इस आधी रात को किसी कहानी में मत बंधिए, बारिश की इस हल्की हल्की बूंदों में, इनकी लय में और इन सुरीले गीतों के साथ जो बिना वजह भी दिल को छू लेते हैं, इनके साथ बहते चले जाइए।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आधी रात का ये ठहरा हुआ लम्हा, जहां हर चीज जैसे अपनी रफ्तार भूल चुकी है, खामोशी इतनी गहरी है कि दिल की हल्की सी धड़कन भी सुनाई देती है, और उसी खामोशी में कहीं धीमे से बजते हैं कुछ सुरीले गीत। ये गीत शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल के करीब बैठ जाते हैं, जैसे कोई बिना बोले साथ निभा रहा हो।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसका गीत संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदी।

വെർണി. वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार. समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ. फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री

0: ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bua in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked a claim to form the new government in the state. The 51-year-old

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

शबाब फिल्म का गीत आपने सुना, इसे लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत दिया नौशाद ने। जोगन बन जाऊंगी पिया तोरे कारण, जैसे बोल सुनते ही दिल अपने आप एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है, समर्पण का, मोहब्बत की गहराई का। इसमें जो भाव है ना, वो बहुत मासूम और सच्चा है कि किसी के प्यार में इंसान अपनी पूरी दुनिया बदल देने को भी तैयार हो जाए। जोगन बनना यहाँ त्याग और भक्ति का प्रतीक है, जैसे प्यार कोई पूजा बन गया हो।

अनारकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इस एक लाइन में ही पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छुपी है कि असली जीना वही है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए जीने लगे। प्यार में खुद को खो देना यहां हार नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन जाता है।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने ये गीत सुना। रफी और लता की आवाज में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी परमन ने।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना। मुबारक बेगम की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वो ना आएंगे पलटकर, इस पंक्ति में जो एहसास है वो बहुत गहरा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे दिल मानना नहीं चाहता कि कुछ लोग कुछ रिश्ते एक बार चले जाएं तो फिर लौटकर नहीं आते। लेकिन पुराने गीतों की खूबसूरती यही है, वो सिर्फ दर्द नहीं देते बल्कि उस दर्द को एक सुकून भरी आवाज भी दे देते हैं जिससे दिल हल्का हो जाता है।

बैजू बावरा फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। मोहे भूल गए सांवरिया, एक ऐसी विरह व्यथा जहां प्रेमी की याद ही सब कुछ बन जाती है, और जब वही सांवरिया भूल जाए तो दिल जैसे खाली हो जाता है। मोहे भूल गए सिर्फ शिकायत नहीं है, ये एक बेबस पुकार है जिसमें इंतजार है, तड़प है और एक मासूम सी उम्मीद भी कि शायद वो लौट आए।

आग फिल्म का गाना आपने सुना, इसे गाया मुकेश ने और लिखा बेहजाद लखनवी ने और संगीत दिया राम गांगुली ने। इस गीत में कितनी गहराई छुपी हुई है, जैसे इंसान जी तो रहा है लेकिन भीतर से कहीं खो चुका है। ये गीत हमें उस एहसास से जोड़ता है जहां दर्द इतना अपना हो जाता है कि वो अलग से महसूस भी नहीं होता, बस जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पुराने नगमों की यही खासियत है, वो हमारे अनकहे जज्बातों को आवाज दे देते हैं और हम बस चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं।

बरसात की रात फिल्म का ये गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कभी कभी कुछ चेहरे कुछ मुस्काने हमें यूं ही नहीं छू जाती, शायद वो किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा होती हैं या दिल के किसी कोने में पहले से बसी हुई कहानी।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वाकई तस्वीर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो उस हंसी की गर्माहट, उस आवाज की मिठास और उस साथ के सुकून को कभी कैद नहीं कर सकती।

आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने। कभी कभी यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना, ना कोई आवाज देती हैं, ना कोई दस्तक, बस चुपचाप दिल में उतर जाती हैं।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। जब प्यार किया तो डरना क्या, यानी अगर दिल से मोहब्बत की है तो फिर किसी का डर कैसा, न समाज का, न हालात का, न अंजाम का।

वक्त हुआ है 1:58 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिल आखिर दिल है, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। अनिल मोहिले ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। जज्बात इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो दिखते नहीं लेकिन हर पल महसूस होते हैं। हर एहसास की अपनी एक कहानी होती है, कभी मीठी कभी चुभती हुई, कभी अधूरी तो कभी पूरी होकर भी अधूरी सी।

खानदान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, किसी अपने का साथ, एक पुराना गाना या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब दिल को हल्का और चेहरे को रोशन कर देते हैं।

गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। हर पल को जी लो, हर एहसास को महसूस कर लो, क्योंकि जो अभी है वही सबसे कीमती है। कभी ये पल खुशियों से भरा होगा, कभी थोड़ा सा उदास भी, पर हर पल अपनी एक कहानी छोड़ जाएगा।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 11 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सवेरे वाली गाड़ी, लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वो दिन वापस जरूर लौटेंगे, ये एक यकीन है, एक उम्मीद जो दिल को थामे रखती है। हर गुजरा हुआ पल कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा रहता है।

जमीन आसमान। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। दिल देना कोई सौदा नहीं होता, ये तो जैसे अपनी दुनिया किसी और के हवाले कर देना है। और जब ये कदम घबराकर उठाया जाए तो उसमें मासूमियत भी होती है और सच्चाई भी।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। रात का अपना एक अलग ही जहां होता है, धीमा, गहरा और एहसासों से भरा। ये रातें कहानी कहती हैं, कभी मोहब्बत की तो कभी इंतजार की। वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। रात सुहानी है, हवाओं में मीठी सी कहानी है, तेरे ख्यालों ने आज फिर दिल को चुपके से छुआ है, हर सितार जैसे बस तेरा ही नाम गुनगुना रहा है।

चांदनी भी शर्मा जाए जब तुम मेरे साथ हो, ये रात और भी हसीन हो जाए तेरे एहसास से, जैसे हर पल मैं बस प्यार ही प्यार बसता रहे तेरे साथ से।

तेरे प्यार का असर यूं ही हर सांस में बना रहे, तेरी हंसी मेरे हर ख्वाब की रोशनी बन जाए, बस तुझ में ही सिमट कर ये दिल सुकून पाता है।

दिल के दरवाजे आज जरा खुल जाने दो, इन हवाओं में मोहब्बत का रंग थोड़ा घुल जाने दो, शायद कोई अपना फिर से दस्तक दे जाए।

कुछ यादें होती हैं जो रात के सन्नाटे में और भी करीब आ जाती हैं। आज की ये महफिल उन्हीं एहसासों के नाम, जहां हर धड़कन में छुपा है किसी का नाम।

ओ मेरे महबूब, चांद और तारे आज गवाह बन गए तेरे मेरे इस खूबसूरत से रिश्ते के। ये रात भी मुस्कुरा उठी है, ये हवा भी कुछ कह रही है, दिल की हर धड़कन में अब सिर्फ तेरी ही सदा रह गई है।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को कल 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के

और समय हो गया है 4:11 और 5 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म दूर का राही फिल्म से, प्यारा सा गीत किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज़ में।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा. आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत. फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार मदन मोहन.

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से नितिन मुकेश की आवाज, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को। सुनते हैं अगला गीत फिल्म धरती से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत अवतार फिल्म से किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और इस गीत के संगीतकार हेमंत कुमार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय कह रहा है कि अनुमति ले ली जाए 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ इजाजत। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों

0: को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माईसोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging

समय हो गया है 5:11 और 4 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और एक बार आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है हरिओम शरण ने।

जीवन हमें यही सिखाता है कि असली ताकत अपने अंदर होती है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, पर जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा दे, वही आपके जीवन की असली जीत है।